0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: Tata Institute of Fundamental Research, TIFR, Hyderabad invites applications for Administrative Officer 1 post and Clerk Trainee 6 post at its Hyderabad campus. The Administrative Officer post is in pay level 10 and the Clerk Trainee stipend is 22,000 rupees per month. Reservations apply as per government rules. Applications must be submitted online by post within 21 days from the date of publication in the Employment News. For details, kindly visit https://recruitment.tifrh.res.in. The Indian Bureau of Mines invites applications for 10 posts of Deputy Mineral Economist Intelligence in Level 11 as per the 7th CPC on deputation or short-term contract basis. Eligible officers from central state governments, public sector undertakings, universities, research institutions and other recognized bodies can apply. The last date to receive applications is 60 days from the date of advertisement in the Employment News. For details, kindly visit the website at https://www.ibm.gov.in. The Archaeological Survey of India invites applications for one Joint Director General Conservation post, level 13, on deputation for 3 years plus promotion. Candidates must have a degree in civil engineering, architecture, and experience in heritage conservation. Officer with 5 years at level 12 or equivalent from government PSUs, universities may apply. Age limit is 56 years. Kindly submit the applications through proper channel within 28 days. Posting is in New Delhi. The National Council for Hotel Management and Catering Technology, an autonomous body under the Ministry of Tourism, invites applications for 2 posts of stenographer grade D, pay level 4. Candidates must be 12th pass with a maximum age of 27 years. Selection will be through a written test followed by a skill test in English or Hindi. Interested candidates can apply by 16/9/2025 via the prescribed form, which is available on the website at www.nchm.gov.in. Delhi Population Control Committee, DPCC, invites applications on deputation or short-term contract basis for 25 posts, including additional director, scientific, senior scientist, senior environmental engineer, programmer, and scientific assistants. Eligibility and details are available on the website at www.dpcc.delhigovernment.nic.in. The Delhi Department of Forest and Wildlife invites applications for 2 posts of Forest Ranger Level 6 on deputation basis. Applications should be sent through proper channel within 45 days after 60 days for certain regions to the Principal Chief Conservator of Forest Delhi. Application format and details available at http://forest.delhi.gov.in. The Department of Science and Technology invites applications for 1 post of Director, Admin and Finance in Survey of India, Dehradun, on deputation level 13. Eligible officers from IAS or Central Group A with relevant experience and age below 56 years may apply. Applications with necessary documents must be sent through proper channel within 45 days. For details, refer to the website at https://dst.gov.in.
0: And now we have the employment news in Hindi.
2: रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता और आइए सुनते हैं कहां कहां निकली रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार का एक संबद्ध कार्यालय है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर कुछ रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अर्ध सरकारी या वैधानिक संगठनों में कार्यरत अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम उपनिदेशक डीडी ग्रुप ए, वेतन लेवल 11 होगा। कुल 2 पद रिक्त हैं। दूसरा पद उप विमानन सुरक्षा अधिकारी DASO ग्रुप सी, वेतन लेवल 4 होगा और कुल रिक्त पद 42 हैं। सामान्य शर्तें, पात्रता मानदंड, आयु सीमा, बायोडाटा प्रपत्र आदि का विवरण आपको BCAS की वेबसाइट bcasindia.gov.in/#pages/vacancy पर प्राप्त हो जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अधिकारी रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तिथि से 60 दिनों के भीतर उपनिदेशक कार्मिक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को अपना आवेदन भेज सकते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली। RVNL कुछ रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम उप महाप्रबंधक सिग्नल एवं दूरसंचार, एक पद रिक्त है जो कि अनारक्षित श्रेणी के लिए है। रिक्ति का स्थान कॉरपोरेट कार्यालय या भारत में कहीं भी हो सकता है। ये पद नियमित आधार पर भरा जाना है और इस पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक है। दूसरा पद उप महाप्रबंधक IT, एक पद रिक्त है। IT सुपरवाइजर, एक पद रिक्त है। सीनियर साइट इंजीनियर, एक पद रिक्त है। SAP इंजीनियर डेवलपर, एक पद रिक्त है। SAP इंजीनियर कार्यात्मक सलाहकार अथवा वित्त, एक पद रिक्त है। इसके लिए रिक्ति का स्थान भारत में कहीं भी हो सकता है और ये पद अनुबंध के आधार पर भरा जाना है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इन सभी पदों के लिए 10 सितंबर 2025 होगी। आप पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट www.rvnl.org पर लॉगिन करके समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पंचकुला हरियाणा। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण क्षेत्रीय पीठ चंडीगढ़ में 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर PPS के 6 पद, निजी सचिव के 1 पद, TO अथवा SO के 3 पद, ट्रिब्यूनल मास्टर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के 5 पद, सहायक के 2 पद, कनिष्ठ लेखाकार के 1 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के 9 पद, UDC के 7 पद, LDC के 4, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 8, स्टाफ कार चालक के 5 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 3 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन 10 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण क्षेत्रीय पीठ चंडीगढ़ टैंक TCP के पास चंडी मंदिर हरियाणा 134107 को भेजे जाने हैं। पात्रता मानदंड और प्रपत्र आदि की जानकारी के लिए आपको वेबसाइट www.aftdelhi.nic.in और www.aftchd.in पर जाकर समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय चंडीगढ़। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय चंडीगढ़ उप कार्यालय जम्मू एवं शिमला के क्षेत्रीय कार्यालय में एक परामर्शदाता ए और एक अनुसंधान सहयोगी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। परामर्शदाता ए के लिए 60,000 रूपए तथा अनुसंधान सहयोगी के लिए 40,000 रूपए के समेकित वेतन के साथ। परामर्शदाता ए के लिए 60,000 रूपए का समेकित वेतन होगा, वहीं अनुसंधान सहयोगी के लिए 40,000 रूपए का समेकित मासिक वेतन होगा। परिपत्र का पूर्ण विवरण आपको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.moef.gov.in पर प्राप्त हो जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तिथि से 21 दिन है। श्रोताओं, रिक्ति से संबंधित कोई भी संशय हो तो आप संबंधित संस्थान की वेबसाइट को विजिट कर उसे दूर कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हमारी शुभकामनाएं।
3: మిట్స్ 90.8 కమ్యూనిటీ రేడియో వింటూనే ఉండండి, విజ్ఞానం వినోదం సమాజ వికాసం కోసం.

मेरे प्यारे देशवासियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मन की बात के माध्यम से मुझे कच्छ से लेकर कोहिमा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश भर के सभी नागरिकों को फिर एक बार नमस्कार करने का मौका मिला है। आप सबको नमस्कार। हमारे देश की विशालता और विविधता, इसको याद करना, इसको नमन करना हर भारतीय को गर्व से भर देता है और इस विविधता के अनुभव का अवसर तो हमेशा ही अभिभूत कर देने वाला, आनंद से भर देने वाला, एक प्रकार से प्रेरणा का पुष्प होता है। कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली के हुनर हाट में एक छोटी सी जगह में हमारे देश की विशालता, संस्कृति, परंपराओं, खान पान और जज्बातों की विविधताओं के दर्शन किए। पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प, कालीन, बर्तन, बांस और पीतल के उत्पाद, पंजाब की फुलकारी, आंध्र प्रदेश का शानदार लेदर का काम, तमिलनाडु की खूबसूरत पेंटिंग्स, उत्तर प्रदेश के पीतल के उत्पाद, भदोही की कालीन, कच्छ के कॉपर के उत्पाद, अनेक संगीत वाद्य यंत्र, अनगिनत बातें, समूचे भारत की कला और संस्कृति की झलक वाकई अनोखी ही थी। और इनके पीछे शिल्पकारों की साधना, लगन और अपने हुनर के प्रति प्रेम की कहानियां भी बहुत ही इंस्पायरिंग होती है। हुनर हाट में एक दिव्यांग महिला की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि पहले वो फुटपाथ पर अपनी पेंटिंग्स बेचती थी, लेकिन हुनर हाट से जुड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया। आज वो न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि उन्होंने खुद का एक घर भी खरीद लिया है। हुनर हाट में मुझे कई और शिल्पकारों से मिलने और उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिला। मुझे बताया गया है कि हुनर हाट में भाग लेने वाले कारीगरों में 50% से अधिक महिलाएं हैं और पिछले 3 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से लगभग 3 लाख कारीगरों, शिल्पकारों को रोजगार के अनेक अवसर मिले हैं। हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक मंच तो है ही, साथ ही साथ यह लोगों के सपनों को भी पंख दे रहा है। एक जगह है जहां इस देश की विविधता को अनदेखा करना असंभव ही है। शिल्प कला तो है ही है, साथ साथ हमारे खान पान की विविधता भी है। वहां एक ही लाइन में इडली डोसा, छोले भटूरे, दाल बाटी, खमन खांडवी, न जाने क्या क्या था। मैंने खुद भी वहां बिहार के स्वादिष्ट लिट्टी चोखे का आनंद लिया, भरपूर आनंद लिया। भारत के हर हिस्से में ऐसे मेले, प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहता है। भारत को जानने के लिए, भारत को अनुभव के लिए जब भी मौका मिले जरूर जाना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत को जी भर जीने का यह अवसर बन जाता है। आप न सिर्फ देश की कला और संस्कृति से जुड़ेंगे बल्कि आप देश की मेहनती कारीगरों की, विशेषकर महिलाओं की समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकेंगे। जरूर जाइए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के महान परंपराएं, हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत में दिया है, जो शिक्षा और दीक्षा हमें मिली है, जिसमें जीव मात्र के प्रति दया का भाव, प्रकृति के प्रति अपार प्रेम, ये सारी बातें हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और भारत के इस वातावरण का आतिथ्य लेने के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रजातियां के पक्षी भी हर साल भारत आते हैं। भारत पूरे साल कई माइग्रेटरी स्पीशीज का भी आश्चर्य बना रहता है। और ये भी बताते हैं कि ये जो पक्षी आते हैं 500 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के और अलग अलग इलाके से आते हैं। पिछले दिनों गांधीनगर में COP13 कन्वेंशन, जिसमें इस विषय पर काफ़ी चिंतन हुआ, मनन हुआ, मंथन भी हुआ और भारत के प्रयासों की काफ़ी सराहना भी हुई। साथियों, ये हमारे लिए गर्व की बात है
कि आने वाले 3 वर्षों तक भारत माइग्रेटरी स्पीशीज पर होने वाले कॉप कन्वेंशन की अध्यक्षता करेगा। इस अवसर को कैसे उपयोगी बनाए, इसके लिए आप अपने सुझाव जरूर भेजें। कॉप कन्वेंशन पर हो रही इस चर्चा के बीच मेरा ध्यान मेघालय से जुड़ी एक अहम जानकारी पर भी गया। हाल ही में बायोलॉजिस्ट ने मछली की एक ऐसी नई प्रजाति की खोज की है जो केवल मेघालय में गुफाओं के अंदर पाई जाती है। माना जा रहा है कि यह मछली गुफाओं में जमीन के अंदर रहने वाले जल जीवों की प्रजातियों में से सबसे बड़ी है। यह मछली ऐसी गहरी और अंधेरी अंडरग्राउंड केव्स में रहती है जहां रोशनी भी शायद ही पहुंच पाती है। वैज्ञानिक भी इस बात से आश्चर्यचकित है, इतनी बड़ी मछली इतनी गहरी गुफाओं में कैसे जीवित रहती है। यह एक सुखद बात है कि हमारा भारत और विशेष तौर पर मेघालय एक दुर्लभ प्रजाति का घर है। यह भारत की जैव विविधता को एक नया आयाम देने वाला है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे अजूबे हैं जो अब भी अनडिस्कवर्ड है। इन अजूबों का पता लगाने के लिए खोजी जुनून जरूरी होता है। महान तमिल कवियत्री वैयर ने लिखा है, कट्टत कैमणवु कल्लादरु उड़गड़वु, कट्टत कैमन अड़व कल्लादत ओला अड़व। इसका अर्थ है कि हम जो जानते हैं वह महज एक मुट्ठी भर रेत है, लेकिन जो हम नहीं जानते हैं वह अपने आप में पूरे ब्रह्मांड के समान है। इस देश की विविधता के साथ भी ऐसा ही है, जितना जाने उतना कम है। हमारी बायोडायवर्सिटी भी पूरी मानवता के लिए अनोखा खजाना है जिसे हमें संजोना है, संरक्षित रखना है और एक्सप्लोर भी करना है। मेरे प्यारे युवा साथियों, इन दिनों हमारे देश के बच्चों में, युवाओं में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। अंतरिक्ष में रिकॉर्ड सैटेलाइट का प्रक्षेपण, नए नए रिकॉर्ड, नए नए मिशन हर भारतीय को गर्व से भर देते हैं। जब मैं चंद्रयान 2 के समय बेंगलुरु में था तो मैंने देखा था कि वहां उपस्थित बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। नींद का नामो निशान नहीं था, एक प्रकार से पूरी रात वो जागते रहे। उनमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर जो उत्सुकता थी वो कभी हम भूल नहीं सकते हैं। बच्चों के, युवाओं के इसी उत्साह को बढ़ाने के लिए, उनमें साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए एक और व्यवस्था शुरू हुई है। अब आप श्री हरिकोटा से होने वाली रॉकेट लॉन्चिंग को सामने बैठकर देख सकते हैं। हाल ही में इसे सबके लिए खोल दिया गया है, विजिटर गैलरी बनाई गई है जिसमें 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसरो की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। मुझे बताया गया है कि कई स्कूल अपने विद्यार्थियों को रॉकेट लॉन्चिंग दिखाने और उन्हें मोटिवेट करने के लिए टूर पर भी ले जा रहे हैं। मैं सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में वे इसका लाभ जरूर उठाएं। साथियों, मैं आपको एक और रोमांचक जानकारी देना चाहता हूं। मैंने नमो ऐप पर झारखंड के धनबाद के रहने वाले पारस का कमेंट पढ़ा। पारस चाहते हैं कि मैं इसरो के युविका प्रोग्राम के बारे में युवा साथियों को बताऊं। युवाओं को साइंस से जोड़ने के लिए युविका इसरो का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। 2019 में यह कार्यक्रम स्कूली स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था। युविका का मतलब है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम हमारे विजन जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के अनुरूप है। इस प्रोग्राम में अपने एग्जाम के बाद छुट्टियों में स्टूडेंट्स इसरो के अलग अलग सेंटर्स में जाकर स्पेस टेक्नोलॉजी,
स्पेस साइंस और स्पेस एप्लीकेशंस के बारे में सीखते हैं। आपको यदि यह जानना है ट्रेनिंग कैसी है, किस प्रकार की है, कितनी रोमांचक है, पिछली बार जिन्होंने इसको अटेंड किया है उनके एक्सपीरियंस अवश्य पढ़ें। आपको खुद अटेंड करना है तो इसरो से जुड़ी युविका की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। मेरे युवा साथियों, मैं आपके लिए बताता हूं वेबसाइट का नाम, लिख लीजिए और जरूर आज ही विजिट कीजिए, www.yuvika.isro.gov.in। लिख लिया ना? मेरे प्यारे देशवासियों, 31 जनवरी 2020 को लद्दाख की खूबसूरत वादियां एक ऐतिहासिक घटना की गवाह बनी। लेह के कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान ने जब उड़ान भरी तो एक नया इतिहास बन गया। इस उड़ान में 10% इंडियन बायो जेट फ्यूल का मिश्रण किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों इंजनों में इस मिश्रण का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, लेह के जिस हवाई अड्डे पर इस विमान ने उड़ान भरी वह न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट में से एक है। खास बात यह है कि बायोजेट फ्यूल को नॉन एडिबल टी बोन ऑयल से तैयार किया गया है। इसे भारत के विभिन्न आदिवासी इलाकों से खरीदा जाता है। इन प्रयासों से न केवल कार्बन के उत्सर्जन में भी कमी आएगी बल्कि कच्चे तेल के आयात पर भी भारत की निर्भरता कम हो सकती है। मैं इस बड़े कार्य में जुटे सभी लोगों को बधाई देता हूं, विशेष रूप से CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के वैज्ञानिकों को जिन्होंने बायोफ्यूल से विमान उड़ाने की तकनीक को संभव कर दिया। उनका यह प्रयास मेक इन इंडिया को भी सशक्त करता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा नया भारत अब पुरानी अप्रोच के साथ चलने को तैयार नहीं है। खासतौर पर न्यू इंडिया की हमारी बहनें और माताएं तो आगे बढ़कर उन चुनौतियों को अपने हाथों में ले रही हैं जिनसे पूरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बिहार के पूर्णिया की कहानी देश भर के लोगों को प्रेरणा से भर देने वाली है। ये वो इलाका है जो दशकों से बाढ़ की त्रासदी से जूझता रहा है। ऐसे में यहाँ खेती और आय के अन्य संसाधनों को जुटाना बहुत मुश्किल रहा है। मगर इन्हीं परिस्थितियों में पूर्णिया की कुछ महिलाओं ने एक अलग रास्ता चुना। साथियों, पहले इस इलाके की महिलाएं शहतूत या मलबरी के पेड़ पर रेशम के कीड़ों से कोकून तैयार करती थी जिसका उन्हें बहुत मामूली दाम मिलता था, जबकि उसे खरीदने वाले लोग इन्हीं कोकून से रेशम का धागा बनाकर मोटा मुनाफा कमाते थे। लेकिन आज पूर्णिया की महिलाओं ने एक नई शुरुआत की और पूरी तस्वीर ही बदल करके रख दी। इन महिलाओं ने सरकार के सहयोग से मलबरी उत्पादन समूह बनाए। इसके बाद उन्होंने कोकून से रेशम के धागे तैयार किए और फिर उन धागों से खुद ही साड़ियां बनवाना भी शुरू कर दिया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पहले जिस कोकून को बेचकर मामूली रकम मिलती थी वहीं अब उससे बनी साड़ियां हजारों रुपयों में बिक रही हैं। आदर्श जीविका महिला मलबरी उत्पादन समूह की दीदियों ने जो कमाल की है उसका असर अब कई गांवों में देखने को मिल रहा है। पूर्णिया के कई गांवों की किसान दीदियां अब न केवल साड़ियां तैयार करवा रही हैं बल्कि बड़े मेलों में अपने स्टॉल लगाकर बेच भी रही हैं। एक उदाहरण कि आज की महिला नई शक्ति नई सोच के साथ किस तरह
नए लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश की महिलाओं, हमारी बेटियों की उद्यमशीलता, उनका साहस हर किसी के लिए गर्व की बात है। अपने आसपास हमें अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि बेटियां किस तरह पुरानी बंदिशों को तोड़ रही हैं, नई ऊंचाई प्राप्त कर रही हैं। मैं आपके साथ 12 साल की बेटी काम्या कार्तिकेयन की उपलब्धि की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। काम्या ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही माउंट एकोनकागुआ उसको फतेह करने का कारनामा कर दिखाया है। यह दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो लगभग 7000 मीटर ऊंची है। हर भारतीय को यह बात छू जाएगी कि जब इस महीने की शुरुआत में काम्या ने चोटी को फतह किया और सबसे पहले वहां हमारा तिरंगा फहराया। मुझे यह भी बताया गया है कि देश को गौरवान्वित करने वाली काम्या एक नए मिशन पर है, जिसका नाम है मिशन साहस। इसके तहत वो सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने में जुटी है। इस अभियान में उसे नॉर्थ और साउथ पोल्स पर स्की भी करना है। मैं काम्या को मिशन साहस के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

एक ओर जहां घने जंगलों का बसेरा है, तो वहीं दूसरी ओर समुद्र का असीम विस्तार है। इसलिए मेरा आप सबसे विशेष आग्रह है कि आप भी अपनी पसंद की जगह, अपनी रुचि की एक्टिविटी चुने और अपने जीवन को एडवेंचर के साथ जरूर जोड़े। जिंदगी में एडवेंचर तो होना ही चाहिए ना। वैसे साथियों, 12 साल की बेटी काम्या की सफलता के बाद आप जब 105 वर्ष की भागीरथी अम्मा की सफलता की कहानी सुनेंगे तो और हैरान हो जाएंगे। साथियों, अगर हम जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो पहली शर्त यही होती है कि हमारे भीतर का विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए। हमारी 105 वर्ष की भागीरथी अम्मा हमें यही प्रेरणा देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक भागीरथी अम्मा कौन है। भागीरथी अम्मा केरल के कोल्लम में रहती है। बहुत बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, छोटी उम्र में शादी के बाद पति को भी खो दिया, लेकिन भागीरथी अम्मा ने अपना हौसला नहीं खोया, अपना जज्बा नहीं खोया। 10 साल से कम उम्र में उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था। 105 साल की उम्र में उन्होंने फिर स्कूल शुरू किया, पढ़ाई शुरू की। इतनी उम्र होने के बावजूद भागीरथी अम्मा ने लेवल 4 की परीक्षा दी और बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करने लगी। उन्होंने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। इतना ही नहीं, गणित में तो 100% अंक हासिल किए। अम्मा अब और आगे पढ़ना चाहती है, आगे की परीक्षाएं देना चाहती है। जाहिर है, भागीरथी अम्मा जैसे लोग इस देश की ताकत हैं, प्रेरणा की एक बहुत बड़ी स्रोत है। मैं आज विशेष रूप से भागीरथी अम्मा को प्रणाम करता हूं। साथियों, जीवन के विपरीत समय में हमारा हौसला, हमारी इच्छा शक्ति किसी भी परिस्थिति को बदल देती है। अभी हाल ही में मैंने मीडिया में एक ऐसी स्टोरी पढ़ी जिसे मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी है मुरादाबाद के हमीरपुर गांव में रहने वाले सलमान की। सलमान जन्म से ही दिव्यांग है, उनके पैर उन्हें साथ नहीं देते हैं। इस कठिनाई के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद ही अपना काम शुरू करने का फैसला किया। साथ ही ये भी निश्चय किया कि अब वो अपने जैसे दिव्यांग साथियों की मदद भी करेंगे। फिर क्या था, सलमान ने अपने ही गांव में चप्पल और डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके साथ 30 दिव्यांग साथी जुड़ गए। आप ये भी गौर करिए कि सलमान को खुद चलने में दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने दूसरों का चलना आसान करने वाली चप्पल बनाने का फैसला किया। खास बात यह है कि सलमान ने साथी दिव्यांगजनों को खुद ही ट्रेनिंग दी। अब ये सब मिलकर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी। अपनी मेहनत से इन लोगों ने न केवल अपने लिए रोजगार सुनिश्चित किया बल्कि अपनी कंपनी को भी प्रॉफिट में पहुंचा दिया। अब ये लोग मिलकर दिन भर में 150 जोड़ी चप्पलें तैयार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, सलमान ने इस साल 100 और दिव्यांगों को रोजगार देने का संकल्प भी लिया है। मैं इन सबके हौसले, उनके उद्यमशीलता को सैल्यूट करता हूं। ऐसी ही संकल्प शक्ति गुजरात के कच्छ इलाके में अजरख गांव के लोगों ने भी दिखाई है। साल 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद सभी लोग गांव छोड़ रहे थे। तभी इस्माइल खत्री नाम के शख्स ने गांव में ही रहकर अजरख प्रिंट की अपनी पारंपरिक कला को सहेजने का फैसला लिया। फिर क्या था, देखते ही देखते प्रकृति के रंगों से बनी अजरख कला हर किसी को लुभाने लगी और ये पूरा गांव हस्तशिल्प की

अपनी पारंपरिक विधा से जुड़ गया। गांव वालों ने न केवल सैकड़ों वर्ष पुरानी अपनी इस कला को सहेजा बल्कि उसे आधुनिक फैशन के साथ भी जोड़ दिया। अब बड़े बड़े डिजाइनर, बड़े बड़े डिजाइन संस्थान अजरक प्रिंट का इस्तेमाल करने लगे हैं। गांव के परिश्रमी लोगों की वजह से आज अजरक प्रिंट एक बड़ा ब्रांड बन रहा है। दुनिया के बड़े खरीदार इस प्रिंट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद देश की चेतना को जागृत किए हुए हैं। महाशिवरात्रि पर भोले बाबा के आशीर्वाद आप पर बना रहे हैं। आपकी हर मनोकामना शिव जी पूरी करें। आप ऊर्जावान रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। साथियों, महाशिवरात्रि के साथ ही वसंत ऋतु की आभा भी दिनों दिन अब और बढ़ती जाएगी। आने वाले दिनों में होली का भी त्यौहार है, इसके तुरंत बाद गुड़ी पड़वा भी आने वाला है, नवरात्रि का पर्व भी के साथ जुड़ा हुआ होता है, रामनवमी का पर्व भी आएगा। पर्व और त्यौहार हमारे देश में सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई ऐसा सामाजिक संदेश छिपा होता है जो समाज को ही नहीं पूरे देश को एकता में बांध कर रखता है। होली के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय विक्रमी नववर्ष की शुरुआत भी होती है। उसके लिए भी भारतीय नववर्ष की भी मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगली मन की बात तक तो मुझे लगता है कि शायद विद्यार्थी परीक्षा में व्यस्त होंगे। जिनकी परीक्षा पूरी हो गई होगी वो मस्त होंगे, जो व्यस्त हैं, जो मस्त हैं, उनको भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए आइए अगली मन की बात के लिए अनेक नई बातों को लेकर के फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।